0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये न सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें. कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: चौबीस सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। चौबीस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
2: सामने वालों का बकरा भी आ गया, बाबा चले ना मंडी।
3: अभी चलते हैं।
4: पैसे रख लिए?
3: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
5: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रात से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
0: This program is brought to you by
6: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
9: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: बैनुल अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं। ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
13: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
14: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
15: हमारी जिम्मेदारी है।
16: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
17: Like us on facebook.com/FM247365
0: FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
18: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paave.
0: Bank of Habib, rishta bharose ka.
2: And Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
0: And
3: agar aap hai inDrive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
8: हमने आपने आपको से 3 बार मौत देखे.
9: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
10: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा.
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
13: FM 247365. किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
14: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए.
13: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
15: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
1: bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100, like us on facebook.com/FM247365. 247-365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
1: Plant banaye faro.
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसे टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
6: Let's
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Trading, trust me bro.
3: Nice scheme.
4: Committee.
2: Plot banaye faro.
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास जुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

वैसे कुर्बानी के हवाले से एक बात मेरे जहन में ऐसी आती है, मेरे अपने जाति भाई, इससे और किसी का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ना इदारे का है। मेरे दिमाग में एक बात ये आती है कि यार हम लोग इतना परेशान हैं टेलीविजन में, सोशल मीडिया में, बुरा हाल है भाई जन, परेशानी से गुजारा नहीं हो रहा है, ये गीत बारे गुजारा नहीं हो रहा यार, ये गीत बारे में एसी नहीं चलाया बारे भाई, लाइट नहीं आ रही है, जिनकी लाइट नहीं आ रही है वो एसी नहीं चला बारे भाई, गर्मी बहुत है। कहने का मकसद ये है कि हालात के पेश नजर में ये बात कर रहा हूँ भाई, हम ये कहते हैं महंगाई बहुत है, अबे बकरे और गाय तो ऐसे मोहल्लों में आ रही है, पहले लोग जो है दो दो दिन पहले लेते थे, अबे शायद भाई कोई पैसे वैसे कम हो जाए, जानवर सस्ता वस्ता मिल जाए, मगर अब तो भाई हफ्ता हफ्ता 20-20 दिन पहले ला रहे हैं, सही जा रहे हैं भाई सब, अबे कहां से नोट आ रहे हैं, मुझे भी दे दो थोड़े से। तो खैर इस पर मैं बहुत दफा चर्चा कर चुका हूं, महंगाई कोई नहीं ज्यादा हुई है मेरी नजर में, तो जब कुवत खरीद है तो कितने महंगाई भाई, खरीद रहे हैं ना। लेकिन एक सवाल है आपसे, ये अक्सर मैं इस हवाले से थोड़ा सा वो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ इस हवाले से, कोई स्टेप लूँ मैं, सफाई के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में कुछ सोचिए। उम्मीर रुबाब कह रही है आजकल अमीन नहीं आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा ही मुझे हमेशा याद रखते हैं, मालूम मालूम जी, अब खाली खाली खूब है ये गवारो, वो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा भाई, हमारा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई, खैर ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिर तो। अच्छा मैं आपको हैरत होगी कि मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूँ, आप हमेशा उसका जवाब देते हैं, और जब मैं सवाल ववाल नहीं कर रहा होता तो कोई पूछता भी नहीं है, नदीम भाई आज का सवाल क्या है, आज आपने क्या पूछा है, अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा, हालांकि मैंने सवाल नहीं किया, लेकिन खैर हम लोग कुछ अपनी आम जिंदगी के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठने के हवाले से भी बात की, खाने पीने के हवाले से भी बात नहीं की है, अभी फिलहाल जानवरों के हवाले से बात की है, कुर्बानी के जानवर, वैसे तो जानवर बड़े घूम रहे हैं लेकिन कुर्बानी के जानवर जो है, कुर्बानी के जानवरों के हवाले से सवाल कर लेते हैं यार, कुर्बानी का जानवर जब आप खरीदने जाते हैं तो वो कौन सी चीज ऐसी है जो कि देखना जरूरी है उसमें, यानी कि समझ रहे हैं ना कि भाई ये कुर्बानी के लिए एलिजिबल है, और कुछ नुक्स वाले जो जानवर होते हैं वो कुर्बानी के लिए नहीं होते, ये जहन में रखिएगा। तो वो कौन कौन से नुक्स हैं जो कुर्बानी के जानवर में देख कर लिए जाते हैं, ये आपने मुझे बताना है 3636 पर। आज सवाल ही कुर्बानी के जानवर पर हो गया भाई, जबरदस्त, ओके ओके ठीक हो गया। उम्मीर रुबाब के लिए हम गाना देख रहे हैं मगर वो मिल नहीं रहे हैं हमें, लेकिन हमें मिल जाएंगे, और अभी हम ट्रैक की जानिब नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और उसके बाद हम एक डेडिकेशन पूरी करेंगे नसरीन की जानिब से, जिन्होंने DHA से हमें मैसेज किया था और जरीन नूर को ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था, तो हम जरूर करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। भाई मैं इंतजार कर रहा था आपके सवाल का, काशिफ कह रहे हैं चले अब मैंने सवाल बता दिया, आप जानवर भी लेकर आ गए हैं, तो आपने ये बताना है कि वो नुक्स क्यों कौन कौन से होते हैं जो कुर्बानी के जानवर में देखे जाते हैं। मुझे तो एलर्जी होती है, मैं जानवरों से दूर दूर ही रहता हूँ। अच्छा ये एलर्जी मेरा बच्चा

0: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: हैप्पी आर विद नदीम अख्तर.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। वादे के मुताबिक हम फौरन से पेशतर जाएंगे गाने की जानेब, और फास्ट ट्रैक कहा था नसरीन ने कि जरीन नूर को डेडिकेट करते हैं, तो फिलहाल मेरी की शीट में ये काफी फास्ट है, उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। एलो फड़ो

वेलकम बैक सुनियो ना जाने क्यों ब्यूटीफुल ट्रैक है हो भाई आप सबको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी एचआई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर और आपके मैसेजेस देखें जरा।

उमेर बाब आजकल मैं नहीं आ रही, आप बहुत अच्छा से मुझे हमेशा याद रखते हो, मालूम आप खाली खाली खूब। अच्छा ये तो हो गया था। और नसरीन का मैसेज दोबारा आया है, क्योंकि हमने ट्रैक चला दिया था, तो जिस पर मैं गाने के दरमियान में कहा था ना कि भाई आसिफ साहब और जरीन नूर को डेडिकेशन के लिए बोला था। और कहीं एक नाम पड़ा आपको दूसरा नाम पसंद नहीं आया, नहीं मेरे जहन से मतलब गुजर गया है, वही आखिर की लाइन देखी, शुरू की लाइन देखी, बीच का मैसेज नहीं पड़ा था। जैसे अभी भी आपका मैसेज जो है वो उसका खुलासा पेश किया, लेकिन आप ये देखिए कि हमने बाद में नाम ले भी दिया है ना, आपने मेंशन किया। हाय उमेर बाब सो स्वीट, वो मेरी बहुत तारीफें किए जा रही हैं, मगर आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, यकीन मानिए। और आखिरकार जनाब संजू आ ही गई हैं, और क्या कह रही हैं भाई, बहुत खूब कह रही हैं, बहुत ज्यादा कह रही हैं। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुश आमदेद, आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहें। आपने अभी तक अभी बात कही कुवत खरीद, इसलिए रश हर जगह है, महंगाई कुछ

0: कुछ के लोग घराने लिपेट में है, महंगाई की वजह से कुछ घराने इसकी लिपेट में है। वो चाह कर भी जाहिर नहीं करते कि अभी नहीं आया जाने ईद कुर्बान का। हाय कितनी जबरदस्त बात की है। इस हवाले से मैं भी आपको चंद मिसालें दूंगा। एक तो आपकी मैसेजेस से मेरे जहन में मिसालें बड़ी आ जाती हैं। अब कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, मिजाज ओके ठीक है और माशाल्लाह से आप भी ठीक ठाक हैं, ये तो बड़ी अच्छी गल है। जरीन नूर नौरीन जी के लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं कह दीजिएगा। जिंदगी में अपने दिल की बहुत सी बातें दिल में ही रह जाती हैं, है कि नहीं? बहुत सी नहीं, बहुत ज्यादा बातें दिल में रह जाती हैं, कुछ जायज भी और कुछ नाजायज भी। हम किसी से नहीं कर पाते क्योंकि हमें हमारे मेयार का सुनने वाला नहीं मिलता। हाय ये बड़ा जबरदस्त जुमला है। अब ये मेयार भी हमने खुद मुकर्रर किए होते हैं संजू, ऐसा ही है ठीक है ना। कुछ लोग हमारे मेयार से बहुत ऊपर होते हैं, कुछ लोग बहुत नीचे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मेयार के मुताबिक होते हैं। जिंदगी में अपने दिल की बहुत सी बातें दिल में ही रह जाती हैं, हम किसी से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मेयार के सुनने वाला नहीं मिलता। हर रिश्ता और हर शख्स हमसे वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। अगर कोई शख्स हमें समझ सकता है तो वो हम खुद हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह भाई क्या बातें की हैं। इसीलिए अपना ख्याल खुद रखें। इत्तफाक ऐसा है कि एक दो शोज पहले मैं इसी हवाले से बात कर चुका था। अपना ख्याल रखा करें भाई, मोहब्बत करें अपने आप से। अर्ज किया है कि मुझे अब तुम याद नहीं आते, मुझे अब तुम याद नहीं आते, अब तुम याद हो गए हो मुझको। हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह वाह भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब किसी ताल्लुक में महसूस हो कि शायद हम एक दूसरे पर मुसल्लत हो रहे हैं तो ताल्लुक को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि खामोश हो जाना चाहिए। फिर अगर कोई तुम्हारी इस खामोशी से उलझन का शिकार हो तो समझ जाए कि उसके साथ ताल्लुक बहुत मजबूत है और वो इस ताल्लुक को निभाने में कोई कोताही नहीं करता। तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन तुम्हारा खामोश हो जाना किसी को मुतवज्जा ना करे तो उसी खामोशी से ताल्लुक खत्म कर लेना चाहिए, इसी में भरम रह जाएगा। और ये पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद आया इसीलिए शेयर किया, और ये बहुत अच्छी बात है, ये हकीकत है इस पैराग्राफ में। कदर करें उन लोगों की जिनको आपकी गैर मौजूदगी में बेचैनी हो जाती है। आए हाय संजू ना करे, आपकी बातें हम पल्लू में से मानते हैं, मतलब अपने पल्लू से नहीं शर्ट से बांध लेता हूँ मैं तो। और कहती है कि आपकी हर बात मैं पल्लू से बांध लेती हूँ सच्ची। तो ये जो आपने शेयर किया है जो आपको बहुत पसंद आया था पैराग्राफ, गौर कीजिएगा इस पर बहुत ज्यादा, यानी कि समझ रही है ना आप। वाह वाह वाह वाह वाह समी साहब आप भी आ गए, आपके मैसेज हम पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।
1: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
3: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है, वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
4: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
5: हमारी जिम्मेदारी है,
4: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। समी अभी तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम आपको लेके चल रहे हैं गाने की जान। उम्मीद रुबाब को हम वो डेडिकेट करेंगे क्योंकि वो पंजाबी गाना बहुत पसंद करती है। तो पंजाबी गाना जो कि बड़ा ट्रेंड पे भी था किसी दौर में, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। उम्र बाप कह रही है संजू आप बहुत बेवफा हो मालूम। और भर भी मेरा सलाम मालूम, पता नहीं भर भी मेरा सलाम मालूम आपको, कह रही है आपने सलाम जवाब में नाम नहीं लिया होगा ना। थैंक यू कहा है नसरीन ने। और आबिद रहमान कह रहे हैं जब कोई नसीहत करने वाला ना रहे वहां से हिजरत कर जाओ। अब्दुल रहमान कहाँ कहाँ हिजरत की है तुमने पहले ये बताओ। अबे आजकल नसीहत भाई सुनता कौन है, आप किसी को कुछ कह दें नसीहत कर दें बेटा इस तरह नहीं करते, तो ज्यादा नसीहत नहीं करो अपने बच्चों को जाके करो, इस तरह के जवाब दे रहे होते हैं, इतने बदतमीज हो गए बच्चे। और मेरे बाप कह रहे हैं अगेन एंड हाँ सॉन्ग के लिए उन्होंने थैंक्स कहा है, वैसे हम लॉन्ग नहीं पहनता हूँ। हाय अल्लाह जी अच्छी बात है और बुरी बात भी नहीं है। एमजे कह रही है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मैं नाराज हूँ आपसे। एमजे क्यों नाराज हो गई है, मेरा बच्चा बता दो क्या हो गया, बंद कबाब खाना है बता दो मुझको या कुल्फी वुल्फी खानी है, टॉफियां लेकर आ जाऊं आइसक्रीम ले आऊं, नाराज क्यों बता दो। दोस्तों को आपका शो अच्छा लगा है, एक अच्छा सा सॉन्ग हमारे नाम, थैंक यू ब्रदर। अपना नाम लिखेंगे तो मैं आपके नाम करूंगा ना, पहले फौरन से बेशतर नाम लिखें और आपके दोस्तों को खुश आमदीद।

0: जिंदगी का मैसेज आया है कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी बखैर है, और कह रही आपकी आवाज में कुछ हो जाए, मेरी आवाज में ही हो रहा है सब कुछ अभी, यकीन मानिए मेरी आवाज सुन रही है उसी में हो रहा है सब कुछ, समझ गया हूँ मैं, सब समझ गया हूँ, गाने शाने के मूड में आप फुल टाइम, और फिलहाल अभी जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के जाने।
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। Schwabe Single Remedies जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है, तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: This program is brought to you by
7: हंडे लाया है Elantra 1.6 Special Edition, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
4: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें, डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है।
1: This public service message is brought to you by FM 100. facebook.com/fm247365
0: fm247365 वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुन। हैप्पी आर्स में मैं हूं आपके साथ, आपको और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी है, सारी हैं मैसेजेस आपके मेरे सामने हैं बेताशा। सवाल भी पूछा हुआ है कि कुर्बानी के जानवर में क्या क्या नुक्स देखे जाते हैं, ये आपने मुझे बताना है। फिलहाल खुरों के बारे में ये बता नहीं सके अभी तक, समी की क्या देखते हैं, खुरों में क्या नुक्स देखा जाता है ये बताइए आप। और जनाब रहीम बलोच साहब पाक सिक्योरिटी मलीर से कह रहे हैं कि सलाम नदीम भाई, क्या हाल है मेरे दोस्तों को, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा सा गाना हमारे लिए भी हो जाए, क्या बात है, थैंक्स। अच्छा ये रहीम साहब थे जिनका पहले बगैर नाम की मैसेज आया है। एने भाई आपको मेरा सलाम, सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम। एने भाई अपने लिए जानवर लोग, ये तो डॉक्टर भी बुक कर लिए। दुआ राजपूत कह रही है जानवर ले तो डॉक्टर भी बुक कर ले, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है नदीम भाई, बहुत अच्छा सॉन्ग, थैंक यू। इलियास भाई कह रहे हैं, और रहीम भाई कह रहे हैं कि नदीम भाई क्या हाल है मेरे दोस्तों। अच्छा ये दोबारा मैसेज कर दिया उन्होंने। एम जी कह रही है आपने उस दिन सबकी रिक्वेस्ट पूरी की लेकिन मैं इंतजार करती रही, मैंने नाम गाने में नहीं चलाया। अभी बता दूं एम जी, अभी चला दूंगा फौरन, लेकिन अभी फौरन बताओगी तो चलाऊंगा, पहले बता रहा हूं ताकि आपकी नाराजगी दूर हो जाए। आप मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपसे नाराज हूँ भाई, बहुत अफसोस हुआ। सुल्तान भाई क्यों नाराज हो, ये तो सब नाराज क्यों हो रहे हो भाई, ईद आ रही है यार, गोश्त नहीं मिलेगा, लोगों से नाराज नहीं हो। ये भी इस चीज का भी ख्याल रखना है हमने, और ऐसा भी हो जाता है, पुप्पी मामी चाची आपस में नाराजगी चल रही है ना, तो मुझे बस फौरन इनमें से एक जो है ना, चलो जाके मिला रहे पुप्पी से, आपकी तो लड़ाई हुई, अरे कोई बात नहीं, कुर्बानी आ रही है, गोश्त आएगा, ये भी सीन चल रहा होता है भैया, तो लिहाजा सुल्तान साहब नाराज होने की जरूरत नहीं है। और आप सब लोगों को एक बात बता दूंगी, मेरे सामने नजरों के सामने जो जो मैसेजेस आते हैं ना, यकीन मानिए मैं तमाम पढ़ रहा होता हूँ, कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो कि मिस हो जाए। अब आप नाम ना लिखे तो वो अलग बात है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मैसेज था या नहीं था, बाद में नाम लिख रहे हूँ, हैं जी हैं जी। सभी कह रहे हैं कि जख्म होता है खुरों में, अबे खुरों में खुर कहते किसको है पहले ये बताओ। नदीम भाई पिंडी नया, अच्छा ये गाने की बात कर रहे हैं यार, अभी ये माजरा चाहूंगा, फरमाइश नहीं चल सकती। नदीम भाई जानवर के खुरों में सबसे पहले मसला होता है जैसे जख्म हो जाता है या कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से जानवर ना खड़ा हो पाता है और ना चल सकता है। ओके कौन से जानवर की बात कर रहे हैं, बड़े जानवर की छोटे, यानी कि बकरे की या गाय की, बैल की या बकरी की, या बताएं मुझे। वैसे उन्होंने जो बात की है सीरियसली सही है, ये भी एक चीज है जो कि देखी जाती है जानवरों में। बस देखें कुर्बानी के जानवर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बगैर नुक्स के हो, ठीक है ना। अब नुक्स के हवाले से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सारे जानवर भी खरीद रहे होंगे लोग, और भाई नुक्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा अपने साथ साथ जो है ना फुल टाइम पंटर लेके जाते हैं, पंटर से मुराद ये अपने उन दोस्तों को हाथ पांव जोड़ के, यार चलिए यार पहले जानवर खरीदा यार भाई नहीं है यार, अब ये ऐसी मिन्नतें समाज देते हैं उन दोस्तों की जा रही होती है जिनको इस हवाले से पता होता है, जो चेक कर सकते हैं कि भाई खुर वुर सही है, मतलब जो नुक्स हैं उनकी निशानदेही वो बेहतर तरीके से करते हैं। तो जिनको हर एक को नहीं पता होता ये, और जिनको नहीं पता तो वो ये कर रहे होते हैं, मंडी में चले जाएंगे वो देख रहे होते हैं बंदे को कि कौन क्या क्या चेक कर रहा है। अब जो बंदा खुर वुर देख रहा होगा, मुंह खोल कर दांत देख रहा होगा ना, आप चलेंगे यार भाई आपको सब पता है, हाँ हाँ यार यार मेरे साथ चल रहे हैं यार, मेरे लिए भी जानवर देख ले रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है, ये भी सीन चल रहे होते हैं फुल टाइम। सभी सही कह रहा हूँ ना, हाँ सभी कुछ वजह है गोल करने की, मैच जीतना होता है तो फुटबॉल में गोल करने पड़ते हैं। काशिफ बहुत सारे मैसेज आ गए भाई, कुर्बानी के लिए बकरा बकरी की एज एक साल गई, और नेल भैंस की उम्र 2 साल और कैमल की उम्र 5 साल होनी चाहिए, ये तो उम्रें बता दी हमने। भाई हमारी संजीदा आपी को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा, बिल्कुल करेंगे जनाब, बेफिक्र हो, प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। ओके ठीक है भाई, भाई ये सॉन्ग बलोची जुबान में था, जी बिल्कुल, जुबान तो उसकी अपनी थी, लेकिन बलोची में था। जानवर को देखा जाता है कोई बीमारी ना हो, मुंह भी देखते हैं। मुंह क्यों देखते हैं बेटा, ये भी तो बता दे मेरे से। जानवर भी तो आपका मुंह देख रहा होता ना। अच्छा भाई, और बीमारी वगैरह, अरे ये तो वही बात हो गई यार काशिफ, जो समी ने कहा था। और भी तो बताओ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। संजू क्या कह रही हैं? अच्छा जी, अब ओए होए होए, प्यारी रुबाब बेवफा नहीं हूँ, सरापा वफादार हूँ शहजादी। रुबाब आपका मैसेज का जवाब आ गए हैं। बस हाथ तेरा हाथ में आने की देर थी, सब मेहरुमा और जो समा हमने पा लिए। वाह वाह वाह वाह, आज लगता है बात गर्मी नहीं है। सुनो मेरी रूहे मन, शायरी में महबूब सिर्फ महबूब नहीं होता, रश्क कमर यानी इतना मैं रक्षा पर बोल रहा था। रश्क के कमर को रक्षा। सुनो मेरी रूहे मन, शायरी में महबूब सिर्फ महबूब नहीं होता, रश्क कमर यानी कि इतना खूबसूरत कि चांद भी उस पर रश्क करे। परिजाद है यानी परिस्तान से आई हुई आई हुई आई हुई शहजादी। रुमन ने मताए जां है यानी हमारी जां है। जस्तजुए पैकर जिसे चाहा जाए काबिले तारीफ है, जिसको देखकर तारीफ की जाए हयात है। यानी आपकी जिंदगी है नूरे हयात, यानी जिंदगी का नूर है। महजबी है यानी जिसका माथा चांद की तरह। जलपरी यानी समंदर का झूमर। हम नफस है, हम ख्याल है, हम सफर, हम नवा, सब है क्या नहीं है। किस कदर दिलकश है तू के तुझे देखने के लिए हवा ने रुख मोड़ा, परिंदों ने हिजरत की। क्या माहौल को रोमांटिक बना दिया है भाई आपने संजू, वाह वाह। हम फुल शरारती मूड में और ये शायरी वाह वाह। गोश्त नहीं मिलेगा आपको अब, मंडी जाते हुए मजा तब आता है जब पुलिस पकड़ ले और किसी के पास से मावा निकल जाए। सही सीन होता है नदीम भाई, तुम तो मावा वगैरह नहीं खाते हो, मैं देखता हूं। अच्छा अच्छा, वैसे ये फैक्ट है एंड बहुत सारे सभी मेरे दिमाग में किस्से आ रहे मगर मैं बोल नहीं सकता। अच्छा जी, कुर्बानी के जानवर में सबसे पहले तो दो दांत देखते हैं। किसके दो दांत देखते हैं भाई, बकरे की या गाय की, ये भी बताओ, तसल्ली हो जाए कि उम्र पूरी है। ये क्या बात हुई, क्या मतलब चार दांत वाले और दो दांत वाले में उम्र का क्या फर्क होता है? अच्छी तरह देखते हैं, कोई जख्म ना हो, कोई सींग वगैरह ना टूटा हुआ हो, ये देख। अरे वाह भाई वाह काशिफ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई काशिफ। ओके टेक है भाई, तुम्हें तो मोहल्ले वाले भी ले जाते होंगे मुझे लगता है फुल टाइम के। आ जाओ काशिफ, जानवर लेने जाना है। आबिद रहमान कह रहे हैं, जानवर की जुबान लंबी ना हो और ऊंचाई 5 फीट से कम हो। अभी किस जानवर की बात कर रहे हो? बुलेट प्रूफ इना भी आ गई है कि नहीं? नदीम भाई, मुझे एक दोस्त से कहना है कि मुझे डायमंड या प्लैटिनियम नहीं, मशवरा चाहिए। वेट लूज करने पे रिश्ते आ रहे हैं। आए हाय, अब कौन से दोस्त से मशवरा चाहिए? अब ये कोई फिटनेस वाला दोस्त हो तो ही अच्छा है भाई। कोई बता सकता है कोई फिटनेस वगैरह کے حوالے سے بتا سکے ہماری پیاری سی بہنا ہنا بلٹ پروف ہنا کو کوئی مشورہ دے سکے. ام رباب صاحبہ کا آپ نے آئے گی گرمی نہیں آئے گا ندیم, یہ ہم کو میسج سمجھ نہیں آئے گا. ام رباب سب کا آپ نے آئے کہ مزہ نہیں آئے گا, جی سر سے گزر دیا بھائی. ہمارے یوسف بھائی پاپوش سے, ارے یوسف بھائی بھائی ہم نے 17 تاریخ والی ایک ڈیڈیکیشن بھی کرنی ہے, سنجو کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. یہ بھی یوسف بھائی میرے ذہن سے نکل گیا تھا, اچھا ہو گیا آپ نے دوبارہ میسج کر دیا ورنہ بالکل ہی ذہن سے نکل جاتا. بھائی ان کی پیاری سی شہزادی جو ہیں ان کی برتھ ڈے تھی, تو سب سے پہلے تو ہم ان کو سالگرہ وش کریں گے اور بہت ہی پیارا سا ٹریک بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے. تو بھائی ہمارے یوسف بھائی جو ہیں فیملی کے بہترین حصے, ان کی صاحبزادی کو صاحبزادی کو سالگرہ کی بہت بہت بہت مبارکباد ہو, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بہت اچھے کرے. تم جیو ہزاروں سال, اور یہ ڈیڈیکیشن ایف ایم 100 کی جانب سے اور یوسف بھائی کی جانب سے آپ کے لیے بچہ ایلو پھڑو.

0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
0: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
2: वेलकम दिल में तुम होटो में तुम आंखों में जाने जा। हमारी प्यारी सी शहजादी जो कि यूसुफ भाई की साहबजादी हैं, उनको हमने ये ट्रैक डेडिकेट किया। और जनाब, एडवांस में बड़ी ईद मुबारक हो, लेकिन गोश्त खाने का इरादा नहीं, बिकॉज आई एम टोटली वेजिटेरियन। वेजिटेरियन होने के बाद इतनी सेहत कि तुम्हें मशवरा चाहिए कि वेट लूज कैसे करते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, भाई समझ नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है भाई, ना आ रही है ना जा रही है, कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। और आबिद रहमान साहब कह रहे हैं जानवर की जुबान लंबी ना हो, अच्छा ये तो हो गया था। तो आबिद भाई आपने बताया नहीं किस जानवर की बात कर रहे हैं, ये 5 फीट और लंबी जुबान, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस दिमाग कहीं और जा रही है। शरारत और चाहत का चोली दामन का साथ होता है। और इरफान साहब आ गए हैं। इरफान साहब क्या हाल है? इरफान जावेद हैं ये, इरफान मेमन नहीं है हमारे। अरे भैया अलीमुद्दीन साहब का मैसेज कहाँ गया? वाजिबुल एहतराम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सज्जाद अली है मेहंदी हसन की आवाज को शो में शामिल कर लीजिएगा। खिदाब उल्लाला नसीम कुरैशी और समी शेख, इमरान रियाज, अयूब आफरीदी और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआगो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। सज्जाद अली का गाना बिल्कुल शामिल करेंगे जनाब, अभी कुछ ही देर में चलाएंगे। टॉपिक खुद ब खुद ही बन गया भाई, और वो बन गया कुर्बानी के हवाले से। अच्छा वैसे ये जो बकरी ईद जो होती है, ईद उल अजहा जो होती है, इसमें एक बड़ी मजेदार किस्म की बात होती है, और वो ये होती है बच्चों की मसरूफियत। जितना बच्चों को इस ईद का इंतजार होता है, मीठी ईद का इतना इंतजार नहीं होता जितना बड़ी ईद का इंतजार होता है, क्योंकि घर में जब जानवर आते हैं या मोहल्ले में भी आ जाएं, या आप यकीन माने कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी घर वालों की इस्तेदात नहीं है और वो जानवर खरीदने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे नीचे दूसरों के मोहल्ले वालों के जानवरों की हिफाजत कर रहे होते हैं फुल टाइम, और बच्चों ने खूब जो है रौनकें लगाई होती हैं पूरे मोहल्ले में, और शोर शराबा और बाजे बज रहे होते हैं, मतलब जैसे जैसे ईद करीब आ रही होती है, और जानवरों को जो लेकर टोलियों की सूरत में जो है वो गली मोहल्लों में घुमाया जा रहा होता है। तो ये तमाम ये जो तफरी है यू कैन से कि ये बच्चों में बहुत ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और बच्चे बहुत खुश होते हैं इस हवाले से। और जाहिर है जो थोड़े से बड़े मतलब बच्चों के वालिदैन जो हैं वो भी इस चीज को समझते हैं, और लेकिन जब बच्चा जो है वो रोजाना तीन तीन चार चार बता मर्तबा जो है उसको बेचारे को नहलाना पड़ता है, जैसे ही वो घर आता है नहाओ चलो बैठे बाथरूम में जाओ, बच्चा नहाया चेंज किया वापस आया उसने खाया पिया फिर चला गया, और फिर जब आता है तो फिर घर वालों का यही सिलसिला होता है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कपड़ों से जानवरों की जो स्मेल आ रही होती है। तो ये एक बड़ा मजेदार किस्म का जो है सिलसिलेकार है। ईद उल अजहा जो है वो हमें बहुत सारी चीजों का दर्ज देती है। इस हवाले से मैं आज नहीं एक खसूसी प्रोग्राम करूंगा, और इसमें बहुत ही जिसको कहते हैं मजेदार किस्म की बातें हैं, जो कि आपको हो सकता है बहुत सारी पुरानी आपकी यादें आपको वो लौटाए, उसके साथ साथ कुछ सबक भी सिखाए कि चलो यार इस ईद पर ये मजा कर लें। तो कोशिश यही होगी कि ईद से चंद दिन पहले ही इस हवाले से ईद के हवाले से प्रोग्राम कर लिया जाए। چلے جناب اب بڑھتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب. ہاں بالکل ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ ٹریک ہم کاشف بھائی آپ کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں سنجو کو. ایلو پھڑو

0: You are listening. You are listening. Music Masti.
1: जी हम आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों बारी है आपके मैसेजेस की, आपकी फरमाइशें पूरे करने की। हफ्ते में एक दिन हम आपके साथ होते हैं संडे दोपहर 3 से 5, और हमारी कोशिश यही होती है हम कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइश पूरी करें। मुबशिर हमें मैसेज कर रहे हैं सलाम कहने, वालेकुम अस्सलाम, और आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, थैंक यू। मैरिन हमें सुन रही है, मैरिन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। अदील हमें सुन रहे हैं, अदील बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है। इसके अलावा अहमद में सुन रहे हैं, अहमद बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। निगार हमें सुन रही है, निगार थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। आलिया हमें सुन रही है, आलिया बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। कमर तनवीर हमें सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आपने कहा, थैंक यू सो मच। और शनादिया हमें, शनादिया गिलानी ने कहा माशाल्लाह जबरदस्त शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिया में सुन रही है, आसिया बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। हामिद हमें सुन रहे हैं, हामिद थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। कादिर बख्श हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। उमर रुबाब ने हमें सुनना शुरू किया, आपने कहा है कि बड़ा जबरदस्त शो है, थैंक यू सो मच। और वकास हमें सुन रहे हैं, वकास बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। तो अपने राइट मैसेज में जाइए कि अच्छा लिखिए स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3636 पर, इसके साथ facebook.com/RJMahfooz।

0: You are listening to Music Masti.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.
2: Rast. आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
3: FM 247 365 FM 100
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
0: You are listening. Music. Musti. Musti.
4: जी जनाब आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। और चार बज चुके हैं, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने फास्ट ट्रैक्स एंजॉय किया। अब 4 से 5 आपने सॉफ्ट मेलोडीज सुननी है। तरीका घर वही है, आपका अपना जाना पहचाना। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, KHI लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे, 3626 पर रवाना करेंगे। इसके साथ साथ facebook.com/azmmehfooz पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। और साथ साथ अगर आपका मूड मैसेज करने का नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो खामोशी से आप सिर्फ सुने प्रोग्राम को और प्रोग्राम को अपना बना लीजिए। आप सुनते हैं यही हमारे लिए बहुत है। कीमती वक्त में से आप थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालते हैं, यही हमारे लिए काफी है। आपकी फरमाइश पे प्रोग्राम का वेरी फर्स्ट ट्रैक झूम।

0: You are listening to Music Masti.
1: जी मैं दोस्तों आ चुके वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। चूंकि प्रोग्राम रिक्वेस्ट शो है और रिक्वेस्ट के साथ साथ आप मुझे मैसेजेस भी करते हैं, साथ साथ सलाम दुआ भी हमारी होती है, ये इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें आपकी खैरियत मतलूब होती है और यकीनन हम भी आपको अपनी खैरियत बताते रहते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आपसे दुआएं समेटते हैं। तो मैसेजेस की तरफ हम मूव करते हैं, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। फौजी हमें मैसेज करी है, सलाम करी है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप बताइए क्या हाल चाल है। फराज ने मैसेज किया, पहली मरतबा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर लिया है। मैं भी हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर लिया है। समी हमें सुन रहे हैं, समी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। इसके अलावा नासिर हमें सुन रहे हैं, नासिर बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मोहम्मद अजीज हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। खालिद हमें सुन रहे हैं, खालिद बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। दिया हमें सुन रही है, दिया थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। नुमान हमें सुन रहे हैं, नुमान बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मोहम्मद कादरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। शबनम हमें सुनिए, शबनम बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और सायमा हमें सुन रही है, सायमा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आपने गाने की फरमाइश की है, कोशिश करते हैं। चले जी प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का एक और खूबसूरत सा गाना, शफकत अमानत अली खान की आवाज, द ट्रैक इज खमाज, मोरा सैया मुंह से बोले ना।

0: You are listening. Music. Masti.
1: जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों, आज या कल में ईद उल अजहा का चांद नजर आ जाएगा तो यकीनन हर एक तैयारी कर रहा है ईद उल अजहा की, जिसको हम बड़ी ईद भी कहते हैं। गलियों में आपने छोटे बड़े तमाम जानवरों की भाग दौड़ देखी होगी। आप अपने घर में होते हैं, छुन छुन छुन छुन छुन छुन करके आवाज आती है तो आप बाहर भागते हैं देखने के लिए, तो जानवर भागते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शौक होता है जानवर को बेकार में भगाने का भी, तो ये ज्यादती है। जानवर खुद भाग रहा है वो उसकी मर्जी है, उसको भाग सकता है, लेकिन अगर आप उसको खींच खींच के भगा रहे हैं तो वो गलत बात है। अगर आपको कोई कान से पकड़ कर खींच खींच के भगाए तो आपको कैसा लगेगा? जानवर भी जो है अल्लाह की मखलूक है, वो लिविंग थिंग होते हैं और हम अशरफुल मखलूकात हैं। वो सोचते होंगे यही अशरफुल मखलूकात है, बिगार में मुझे भगा रहे हैं। तो बहरहाल हर गली कूचे में जानवर ही जानवर हैं और अभी कुछ दिनों के बाद तो बेपनाह जानवर हो जाएंगे। और बहुत सारी गलियां ऐसी भी हैं जो बंद कर दी जाती हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको आप खुलवा नहीं सकते, वो बदमाशी है, वो गली बंद हो जाएगी वो, और पूरे तीन दिन बंद रहेगी, उससे आप निकल नहीं सकते। दुआ यही है कि हर साल की तरह इस साल ऐसा ना हो कि गलियों में और रोडों पर अलाइशें पड़ी हुई हों और कोई पुरसाने हाल ना हो। खाले उठा के ले जाते हैं लेकिन अलाइशें नहीं उठाते, खालों में बचत हो जाती है ना। वैसे शहरी जो गवर्नमेंट है वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, पिछले साल जल्दी जल्दी उठाई गई थी खाले, वो खाले नहीं, खाले तो कोई और उठाता है, अलाइशे वगैरह उठा के ले जाते हैं। और सूर्य पे सुहागा ये भी हो जाता है, अभी तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक ऐसे चांस हैं कि अलाइशे रोड पे पड़ी हों, बारिश हो जाए। एक बकरीद मैंने ऐसी भी देखी थी, कुछ साल पहले की बात है कि बकरीद वाले दिन जब जिबा हुआ जानवर और अलाइशे रोड पे थी और तेज बारिश हो गई, वो अलाइशे जो है रोडों पर तैर रही थी, वो बड़ा खतरनाक माहौल हो गया था। तो सफाई सुथराई का जरा ख्याल रखना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है शहरी हुकूमत से, जो ऊन करते हैं कराची को, तमाम लोगों से और तमाम मैं और आप हम समेत, कि सफाई और सुथराई का बड़ा ख्याल रखें। हम सब मिलकर काम करेंगे तो फिर ही काम हो सकता है। आवाम की भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे या हम हुकूमत के साथ या शहरी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनाब, आपने बकरीद मनानी है और जोश व खरोश के साथ मनानी है, इस्लामी फरीजा है। अपने उन भाइयों का जरूर ख्याल रखना है जो साहिब इस्तेआत नहीं है, अपना डीप फ्रीजर जो है वो गोश्त से भरना नहीं, किसी का पेट भर जाए वो ज्यादा बेहतर है।

0: You are listening to Music Masti.
1: Rost. आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराहे रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराहे रास्त।
2: facebook.com/fm247365 fm247365।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365।
5: Pure emotions, timeless classics.

0: listening to music. Musti.
1: जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आपके मैसेज की तरफ हम मूव करते हैं। इरम ने हमें मैसेज किया, सलाम कहें, वालेकुम अस्सलाम, आपको शो अच्छा लग रहा है, हैप्पी संडे आपने कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ आपने फरमाइश की है, मैंने नोट कर लिया जी। मानिए हमें मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मुइन मलिक हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। नूर शेख हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है जी। इसके अलावा फायजा हमें सुन रही है, फायजा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। शफक हमें सुन रही है, शफक बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मोहम्मद अजीज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। इसके अलावा नाजिया अहमद हमें मैसेज कर रही है, सलाम करी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मुकद्दस हमें सुन रही, मुकद्दस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। इरम सुन रही, इरम बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और मोहम्मद शफात अली सुन रहे, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तो अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3666 पर। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पुराना गाना सुनते हैं।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: It's 4:45 p.m. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगी का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365
6: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
7: जी मेरे दोस्तों, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आप सुन रहे हैं एफएम 100 पाकिस्तान, मुझे कहते हैं महफूज और यह है म्यूजिक मस्ती। अब हमें सुनते हैं कराची में, आप हमें रेडियो सेट पे सुन सकते हैं कराची में 100 की फ्रीक्वेंसी पे। इसके साथ साथ कराची हो, कराची से बाहर हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, अब आसानी हमें वेबसाइट से सुन सकते हैं। FM100 पाकिस्तान.com पर जाइए, वहां हमारी

0: You are listening to music. Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, देखते देखते दो घंटे कैसे गुजर गए हमें पता नहीं चले, यकीनन आपको भी नहीं पता चले होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मैसेजेस किए 366 पर, फेसबुक पे मैसेजेस किए और फिर कॉल्स की, और कुछ ना सही सिर्फ सिर्फ खामोशी से सुन के भी आपने प्रोग्राम को चार चांद लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं महफूज करें एफएम 100 पाकिस्तान को, रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालदेन हैं तो उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे यानी अगले इतवार दोपहर 3 बजे पर, हमारा आपका साथ रहेगा 3 से 5। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
0: प्लाट बनाए फरो।
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: This program is brought to you by हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
5: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
4: एंड
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
4: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय हर रेमेडी।

0: पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे।
1: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
3: एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
7: समझे आप ना, उसे 3 बार मौत देखे
8: टाइम से ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
9: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सब मारिया, सब छुटिया।
6: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
10: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
6: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.
2: चौबीस सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने. चौबीस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद.

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
15: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
16: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
17: ہماری ذمہ داری ہے۔
18: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Like us on facebook.com/fm247365
19: fm247365
20: fm100
21: 31 saal fm100 aapki awaaz। Assalamu alaikum pakistan,
22: assalamu alaikum pakistan।

0: 8:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath, full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ.
3: बैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्योपैथी पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।

0: एक्वायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
7: This program is brought to you by
8: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: Like us on facebook.com/FM247365.

0: टायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: 100 FM।
13: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
14: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
12: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
15: FM247365.
16: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
17: Only music.

0: एक्वायर करना है नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: प्लाट बनाए फरो
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
8: FM247365
9: Let's celebrate
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Like us on facebook.com/fm247365.
6: FM 247 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: This program is brought to you by
0: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
1: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

तबे तले इस्तेमाल। मुनशियात हरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां बात करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रही है। यही वो मकाम है जहां इंसिदाद मुनशियात फोर्स ANF वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

अटक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया।

ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबी पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।